0: दिल वालों की दिल्ली में बैडमिंटन इन दिनों एक खेल नहीं जुनून बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन एरिना में हवा में लहराते शटल पर लगता हर स्मैश, नेट पर चतुराई से जुटाया गया हर पॉइंट, फोरहैंड और बैकहैंड शॉट पर बनता हर अंक बैडमिंटन प्रेमियों के जोश को जश्न में बदल रहा है। शटलर्स की हर एक फुर्तीली चाल और रैकेट की हर गूंज इतिहास लिख रही है। इस रैकेट गेम के 44 फीट लंबे कोर्ट पर हर एक सनसनाते स्मैश के साथ स्टैंड्स में मौजूद हजारों बैडमिंटन प्रेमियों के दिल की धक धक और स्टेडियम से उठती गूंज ये बता रही है कि दिल्ली दुनिया का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस अद्भुत और अनूठे माहौल के बीच किसी को पराजय निराश कर रही है तो किसी की जीत खेल प्रेमियों को और ज्यादा जोश से भर रही है। आगे बढ़ने के लिए मचे जद्दोजहद के बीच चिर परिचित माहौल, घरेलू मैदान, तालियों की गड़गड़ाहट और स्टैंड से उठता शोर भारत के झंडा बरदारों को नई ताकत और गजब की स्फूर्ति से भर रहा है। इस जुनूनी माहौल के बीच भारतीय खिलाड़ी हैरत अंगेज परिणाम भी दे रहे हैं। बात चाहे 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु की हो या फिर वर्ल्ड नंबर 1 शी युकी को पहले में बाहर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी की, घरेलू दर्शकों का समर्थन इनमें एक नई जान फूंक रहा है। भारत के लिए तीसरे दिन की शुरुआत भी शानदार रही। कोर्ट पर उतरने से पहले ही एक जीत मेजबान देश के लिए दर्ज हो गई जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं सीट जोड़ी मेंस डबल्स के राउंड ऑफ 32 में वॉक ओवर के साथ अगले दौर में पहुंची। स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डुन और एडम प्रिंगल ने फिटनेस की समस्या के कारण कोर्ट पर उतरे बिना ही मैदान छोड़ दिया। हालांकि इस अनचाही परिस्थिति ने सात्विक और चिराग की जोड़ी के गगनभेदी स्मैश और नेट पर चीते जैसी फुर्ती को देखने की उम्मीद कर रहे बैडमिंटन प्रेमियों को थोड़ा निराश किया। फिर भी ये भारतीय जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मैदान पर जीत के साथ अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो पर था। इस जोड़ी ने भी उम्मीदों को परवान चढ़ाया। दोनों का मकाऊ की जोड़ी लियोंग लोकचोंग और वेंग ची एनसी के खिलाफ मुकाबला एक तरफा रहा। पहला गेम भारतीय जोड़ी ने 21-11 से जीता। दूसरे गेम में भी शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और एक बार फिर स्कोर 21-11 ही रहा। ध्रुव ने बताया कि पिछले साल की गलतियों से सीखकर इस बार कोर्ट पर उतरे। वहीं तनिषा ने बताया कि बेहतर तालमेल से जीत आसान हो गई।
1: Since last year we learned a lot and this year it's going well now. Like there are days like when we are not at the best but still we are trying to figure it out like how do we have to become more stable and keep performing well.
2: Before him coming my game was not more mixed doubles oriented but I think after him stepping in he's changed my game a lot especially like moving in and being more aggressive which gives ध्रुव a lot more opportunity at the back and I think that's exactly what's needed in mixed doubles and gives us a right plan.
0: हालांकि भारतीय खेमे की सफलता के तीसरे दिन का सिलसिला मेंस डबल्स में टूट गया जब हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की भारतीय जोड़ी 15वीं रैंक कोरियाई जोड़ी कैंग मिन ह्यूक और की डांग जू से पहले गेम में संघर्ष के बाद मैच 17-21 14-21 से हार बैठी। इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी के बीच वैसा तालमेल नहीं बन सका जिससे वे जीत तक पहुंच सकते थे। एमआर अर्जुन ने भी इस बात को माना।
3: आई थिंक हम लोग स्टार्ट अच्छा ही किया था मैच से पहले। हमारा टैक्टिक ऐसा था कि कोरियंस के साथ यू नो दे आर वेरी गुड एट डिफेंस तो मैच लंबा होने वाला था एंड हम लोग मेंटली प्रिपेयर था लंबा मैच खेलने के लिए एंड आई थिंक 15 ऑल तक वी एक्सिक्यूटेड आवर टैक्टिक प्रीटी वेल। हियर एंड देयर मिस्टेक्स हो रहा था बट हम लोग कवर भी कर रहा था 15 ऑल तक लेके आया मैच को बट फिर उधर से जो आई थिंक 2-3 पॉइंट्स कंटिन्यूस चला गया आई थिंक दैट कॉस्ट अस द मैच बिकॉज 18-15 से एक्सपीरियंस पेयर है वो लोग तो एक एक्सपीरियंस पेयर से 18-15 डाउन से टू ब्रिंग अप द मैच और क्लोज मैच इज सच डिफिकल्ट टास्क।
0: कोर्ट नंबर 3 पर इसके बाद बारी आई भारतीय महिला बैडमिंटन की नई सनसनी उन्नति हुडा की। उनका मुकाबला था 13वीं रैंक वाली कनाडा की मिचेल ली के साथ। बिना किसी दबाव और तनाव के कोर्ट पर उतरी उन्नति ने हार के बावजूद सबको अपना मुरीद बना लिया। पहला गेम 21-11 से जीतने वाली हरियाणा की उन्नति ने दूसरा गेम आसानी से 9-21 से गंवा दिया। लेकिन इस मैच का सारा रोमांच तो जैसे तीसरे गेम में छिपा था। उन्नति 2 बार मैच पॉइंट पर भी पहुंची लेकिन कैनेडियाई खिलाड़ी ने दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 23-21 से अंतिम गेम और मैच दोनों जीत लिया। लेकिन बैडमिंटन प्रेमियों का दिल तो भारतीय लड़की ने जीता। तभी तो हार के बाद भी उन्नति के चेहरे पर मुस्कान थी।
2: बहुत अच्छा मैच था। आई प्लेड रियली गुड। मैंने अपना पूरा दिया बट लास्ट में मैं अपने साइड मैच को कन्वर्ट नहीं कर पाई। 2 बारी एडवांटेजेस भी आए, मैच पॉइंट भी आया बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई पुश्ड मायसेल्फ एंड पुश्ड हर आल्सो। इट वाज अ रियली गुड मैच एंड आई एम हैप्पी द वे आई प्लेड ऑन द नेट। आई डिड गुड टैप्स एंड ड्रिबल्स आल्सो। आई फील लाइक इन बिटवीन 2-3 पॉइंट्स आई डिड फ्यू सिली मिस्टेक्स फ्रॉम माय हैंड दैट आई शुडंट हैव बीन डन बिकॉज वो वर्ल्ड नंबर 13 है सो आई थिंक उसकी तरफ से सिली मिस्टेक्स बीच बीच में क्रिटिकल मोमेंट्स पे बहुत कम हुए एंड व्हेनेवर शी हैड द चांस शी जस्ट took it. So I have to learn this from playing with the upper ranked players.
0: Unnati ne mana ki is match ne unhe dher sara anubhav diya.
2: Yeah, I feel like in this tournament I was taking a lot of time and I was a bit more patient than my previous games. And I was sticking to the plan. And when she was able to understand what I'm playing, so I was able to change my game plan also according to the situation. So it has improved if I compare with my previous matches.
0: लगातार दो हार से हताश भारतीय खेमे की निराशा को मेन सिंगल्स में 14वीं सीड लक्ष्य सेन की हार ने और गहरा कर दिया। मैच में फेवरेट लक्ष्य की चुनौती को अमेरिका के गैरेट टैन ने मैराथन मुकाबले में 21-19, 19-21, 17-21 से ढेर कर दिया। पराजय से परेशान लक्ष्य ने माना कि विरोधी ने ज्यादा बेहतर खेल दिखाया।
1: इट वॉज अ गुड मैच, आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई ओपोनेंट, ही प्लेड अ वेरी सॉलिड गेम एंड again towards the third set both of us were like completely exhausted, so yeah, I think I gave it my all in the end, but yeah, it was just not enough to win this match and yeah, a little bit disappointed.
0: Iske baad bari thi Bharat ke men's badminton ki nayi ummeed आयुष शेट्टी की। पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर वन को शिकस्त देने वाले आयुष ने श्रीलंकाई प्रतिद्वंदी दिमेंदु अभय विक्रमा को मात्र 26 मिनट में एक तरफा अंदाज में 21-8, 21-10 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी शक्ति को बचा लिया। आयुष ने कहा, मैच आसान था।
4: आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ मैच। आई थिंक ऑल माय मैचेस आई कम प्रिपेयर्ड एज इफ यू नो इट्स गोना बी अ रियली ग्रेट मैच बिकॉज़ आई थिंक एवरीवन इज प्लेइंग गुड, प्लेइंग ग्रेट बैडमिंटन आई थिंक इन मेन सिंगल्स। सो या आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ मैच बट हैप्पी विद द यू नो कंफर्टेबल। डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच अगेन टुमारो अगेंस्ट एलवी। आई प्लेड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट मैच एंड सुपर टफ ओपोनेंट। एज ऑफ नाउ यू नो रिकवर एंड आई थिंक लेटर यू नो वी प्रिपेयर फॉर द मैच एंड
0: कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तीसरे दिन भारत के लिए अंतिम मैच में कोर्ट पर उतरी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु। सिंधु ने राउंड ऑफ 32 में कनाडा की वेन यू झेंग को 21-16, 21-17 से मात दी। मैच के बाद सिंधु ने कहा कि इस जीत के बाद अब वो अगले मैच के लिए भी तैयार हैं।
5: मुश्किल ही होगा, ऑब्वियसली इजी मैचेस नहीं रहेगा। अभी जब हम टॉप एथलीट्स के साथ खेल रहे तो इजी मैचेस या इजी पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग मैचेस एंड आई एम रेडी फॉर इट। एंड मैं वांगजी के साथ बहुत अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव प्लेड अगेंस्ट हर एंड वी नो ईच अदर्स गेम, बस आई नीड टू गिव माय बेस्ट एंड प्ले माय गेम।
0: सिंधु ने माना कि उनके लिए फिटनेस को बनाए रखना इस समय एक चुनौती है।
5: या आई थिंक रिकवरी प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड यू नो बैक देन व्हेन यू आर एट योर 20s यू आर लाइक ओके यू नो यू कैन प्ले, यू कैन कम बैक, यू कैन प्ले एंड देन यू कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। बट आई थिंक आफ्टर सर्टेन टाइम यू नो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट 20 और 19 एनीमोर। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली स्मार्टली मेक दोज चेंजेस।
0: विदेशी खिलाड़ियों में वर्ल्ड नंबर 6 चाइनीज ताइपे के चाउ तियन चेन ने इटली के जियोवानी टोटी को आसानी से 21-12, 21-11

से शिकस्त दी। तीसरी सीड इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी भी सिंगापुर के जिया हेंग ते के साथ 19-21, 21-19, 21-11 से जीत कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 12वीं सीड चाइनीज ताइपे के लिन चुन यी डेनमार्क के रास्मस गेमके से हार कर उलटफेर के शिकार हुए। महिला वर्ग में टॉप सीड कोरिया की अन से यंग, तीसरी सीड चीन की वैंग जे ही, 10वीं सीड जापान की कोदाई नाराओका, 5वीं सीड चीन की हैन यू भी अन्य खिलाड़ियों के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब आज चौथे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला भारतीय अभियान का आगाज करेंगी। इस जोड़ी का सामना 7वीं सीड जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी से होगा। मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 16 में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो 6ठी सीड चीन के गुओ जिनवा और चेन फेंग हुई से भिड़ेंगे। मेन सिंगल्स में आयुष शेट्टी का सामना 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड चीन की वांग जीई से दो दो हाथ करेंगी। भारत के लिए दिन का अंतिम मैच मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक सैराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का होगा। यह जोड़ी मलेशिया के जुनैदी आरिफ और यैप रॉयकिंग से खेलेगी। तो तिरंगा यूं ही आसमान की बुलंदियों पर लहराता रहे, जीत का कारवां आगे बढ़ता रहे और भारतीय बैडमिंटन की स्वर्णिम गाथा लिखी जाती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर स्वाति और इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। अगर अभी भी आप सोए हुए हैं तो उठ जाइए, क्योंकि सुबह की पहली चाय ठंडी हो रही है और आपके कान के पास किसी अनचाहे मेहमान का संगीत बज रहा है। तो दोस्तों, आज है तारीख 20 अगस्त और आज का दिन एक बहुत ही खास संदेश लेकर आता है, यानी कि विश्व मच्छर दिवस, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब मच्छर का नाम सुनते ही शायद आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि हाथ अपने आप कान या गाल की तरफ चला गया होगा, क्योंकि मच्छर भले ही छोटा सा जीव हो लेकिन हमारी सेहत के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये दिन वो है जब 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मलेरिया इन नन्हे उड़ते परिंदों की वजह से ही फैलता है। लेकिन दोस्तों, आज हम ज्ञान कम और गपशप ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है नॉनस्टॉप गपशप और आज मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आप सभी को तो हमारा फोन नंबर पता है, नंबर है हमारा 2213-1341, यानी कि 2213-1341, और इस नंबर पर कॉल कर आपको बताना है कि रात को जब मच्छर कान के पास गाना गाता है तो आपकी नींद कैसे उड़ती है और फिर उस मच्छर को भगाने के लिए आप क्या करते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी जो है कहीं ना कहीं इस चीज से गुजर चुके हैं और शायद बारिश के मौसम में बिल्कुल इसका आतंक कुछ ज़्यादा ही फैला होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ हरकतें की हैं मच्छरों ने गाना गाते हुए आपकी नींद उड़ाई है, तो चलिए आप अपनी सोच को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा नंबर है 2213-1341, यानी कि 2213-1341, जहाँ अपनी सोच को अपनी बातों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप लोग नंबर डायल करते हैं तो क्यों ना तब तक अगले गीत की ओर रुक कर लिया जाए।

0: तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, सुप्रभात।
0: सुप्रभात, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: आज का टॉपिक सचमुच मजेदार है, मतलब सुबह सुबह ऐसा टॉपिक, मतलब आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक्चुअली मच्छर दिन भर पता नहीं कहाँ

0: गायब रहता है
1: जी,
0: लेकिन जब रात होती है तो दुनिया का जितना भी संगीत है वो सुना के जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक ऐसा चीज है कि इंसान, मतलब ये एक लाइफ लेसन है कि आप डू नॉट सी द साइज बट सी द इम्प्लीकेशन द इफेक्ट।
1: बिल्कुल।
0: ये एक छोटा सा चीज, एक बहुत ही छोटा, ये इंसान जो इतना बड़ा है और सबसे इंटेलिजेंट है, सोशल बींग है, उसको मतलब नस्तनबूत बोलते हैं ना, बता नहीं
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल,
0: वैसा कर देता है कि उसमें मतलब सब डेडली डिजीज जो आता है, मतलब ये लाइफ लेसन है कि कभी भी साइज पे मत जाओ, पता नहीं उसमें क्या। और सबसे बड़ी बात है जो मच्छरदानी है
1: जी,
0: ये हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मच्छरदानी के अलावा जो रेपेलेंट है, लिक्विड रेपेलेंट हो या फिर जो पहले का आता था ना वो ग्रीन कलर वाला कॉइल, अभी भी आता है। लेकिन उसका सबसे प्रॉब्लम ये है कि वो हेल्थ रीजंस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं घर में कोशिश करता हूँ कि मच्छरदानी जो मच्छरदानी बोलते हैं शायद मौसारी जो बोलते हैं ट्रॉली में,
1: बिल्कुल,
0: तो वो लगा ले, क्योंकि वो सेफ्टी भी है। और रेपेलेंट का प्रॉब्लम ये है कि आपको खिड़की बंद रखनी पड़ेगी, देर जाके आधा घंटा एक घंटा बाद खोल दो, वो सब झंझट, लेकिन रात का नींद पूरा टोटल खराब कर देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसलिए सेफ तो रहना ही है, तो मच्छरदानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, रेपेलेंट मत करे, कॉइल तो बिल्कुल मत करे, रेपेलेंट से भी खतरनाक है कॉइल।
1: बिल्कुल।
0: तो यही मतलब आज का टॉपिक सुन के मुझे लगा कि मुझे कॉल करके एक बार कुछ बोलना ही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये इसको दिखाई नहीं देता है ना, मतलब जैसे कि बहुत लोग बैट भी यूज करता है ना, अभी बैट का ट्रेंड हो गया है
1: जी,
0: तो इतना छोटा है वो दिखाई भी नहीं देता है।
1: मतलब एक छोटा सा जीव हमें बड़े से इंसान को बहुत ज्यादा एक तरीके से परेशान करके जा सकता है।
0: और ये जो क्लैपिंग मैकेनिज्म आ गया ना, क्लैप करते रहो मारते रहो, वो एक सचमुच। और उम्मीद है अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। ये जो पहला गाना बताया इससे पहले मजेदार था
1: जी, धन्यवाद।
0: तो ऐसे ही हम लोग को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, आपने अपनी सोच हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो दोस्तों, मच्छर भगाने के लिए हमारे देश में जितने इनोवेशन हुए हैं उतने शायद स्पेस साइंस में भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि किसी के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक टेनिस रैकेट है और वो बेड पर ही बैठकर विबंडल खेल रहा है, तो कोई 40 डिग्री की गर्मी में भी सिर से पैर तक कंबल ओढ़कर कवच बना चुका है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप भी कॉल करके बता सकते हैं कि आपने सबसे अनोखा देसी जुगाड़ क्या किया था, और साथ ही साथ जब मच्छर आपकी नींद उड़ाता है तो गीत गाकर चला जाता है तो आप क्या करते हैं, कैसे उससे बचते हैं। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल स्टूडियो में समय हो चला 10:18:30 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जी हाँ नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप फोन में नंबर डायल करें तब तक अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि उनकी क्या राय है। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शौभिक शकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शौभिक जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी। तो आज आप मच्छर के लिए जो बात कर रही है, हाँ देखिए दीदी, हम लोग को जो छोटा सा एक जीव सुबह सुबह रात में हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करता है। देखिए इसीलिए हम लोग का जो मेनली जो है रात में हम लोग को मशरी टांगना मुंबई, क्योंकि हम लोग कभी कभी हम मशरी नहीं टांगते हैं। मुझको लग रहा है वर्षा काल में बहुत मच्छर बढ़ जाता है, मुझे लग रहा है मशरी टांगना होगा। और आसपास सबसे होगा जो आसपास में हमारा घर में जो आसपास जो एरिया है परिच्छन रखना होगा, कभी भी डब्बे में बोलिएगा कोई भी बाल्टी वगैरह जो भी है वहाँ पर देखना होगा जो वो जो जल पानी जो है ना वो जमाना वो जो उतना दो दिन चार दिन देखता हूँ जो वो भर भर भर जाता है, पुरस्कार पुरस्कार रहना चाहिए। विशेष कर दीदी आप लोग देखेंगे जो जो है का जो पब होता है वहाँ पर बहुत पानी जम जाता है, उसको लग रहा है वो भी परिष्कार परिच्छन रखना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: और घर में तो परिष्कार परिष्कार रखना ही होगा, कभी हम लोग घर में भी उसको लग रहा है कभी कभी वो जो हम लोग बोलता है जो फिनाइल से बोलिए तो है वो भी परिष्कार परिच्छन रखना चाहिए। विशेष कर हम लोग का जो घर में जो बच्चा जो है जो ओल्ड मैन जो है हम लोग का दादा दादी जो भी है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर जो उसको जो अटैक करता है उसको बुखार आ जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई ना कोई रोग आ जाते हैं। मुझको लग रहा है ऐसे से कोई ना कोई करेंगे तो हम लोग सुस्त सबल तो रहेंगे, क्योंकि ऐसा जीव हम लोग को बहुत विरक्त करता है। और कभी कभी मैं देखता हूँ वो जाली दे देता है घर में जो डालना का जो होता है ना जाली दे देता है एकदम परमानेंटली वो लगा देता है, क्योंकि मच्छर मच्छर नहीं घर में नहीं आए तो ऐसे ऐसे ऐसे करता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रात में जब हम लोग सोएंगे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मशरी टंगा के सोना चाहिए हमें,
0: क्योंकि ये छोटा सा जीव बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है।
1: एकदम दीदी लग रहा है ऐसे से हम लोग सावधान होंगे
0: तो बेहतर होगा जी,
1: बेहतर हो पाएंगे।
0: बिल्कुल थैंक यू सो मच शौभिक जी अपनी सोच हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक।
0: तो दोस्तों मच्छर का नाम सुनते ही हमें मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया और कई दूसरी बीमारियों के प्रसार में अलग अलग प्रकार से मच्छरों की भूमिका याद आ जाती है, लेकिन मच्छर से बचाव केवल घर की सफाई का विषय नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जागरूकता का भी विषय है। अब बारिश का नाम लेते ही इसमें मौसम जो है रंग में जो भंग पड़ जाता है। बिल्कुल बारिश इतना सुहावना मौसम होता है लेकिन ये मच्छर आकर इसमें रंग में भंग करके जाते हैं, क्योंकि ये जितना सुहावना लगता है उतना ही ज़रूरी है इस मौसम में सावधानी भी रखना, क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह जैसे पानी जमा हो जाता है और यही ठहरा हुआ पानी कई प्रकार के मच्छरों के प्रजनन के लिए उपयुक्त जगह बन जाती है। इसलिए दोस्तों घर के आसपास कूलर गमले बाल्टी पुराने टायर छत या किसी भी ऐसे बर्तन में पानी जमा ना रहने दें, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी और बहुत बड़ी परेशानी से बचाव हो सकता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, इस गीत को सुनते ही ऐसा लगता है कि बारिश की जब बूंदे पड़ती तो मच्छर भी यही कहते हैं कि अब उसका भी मन उसके बस में नहीं है, क्यों? तो चलिए दोस्तों, अब अगले कॉलर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि मच्छर ने किस प्रकार से परेशान करते हैं। हेलो।
1: हाँ, मैं अरूप बोल रहा हूँ
0: जी। नमस्कार अरूप जी।
1: हावड़ा से।
0: हावड़ा से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या कहना चाहते
1: हैं? अभी तो दो तीन मच्छर काट के भागा, हम तो धूप जला।
0: बिल्कुल, तो कैसा लगा मच्छर के काटने पर आपको?
1: मच्छर काटने वाले तो मारने नहीं सकेगा, एक तो दो तो मारा।
0: मारे भी आप दो?
1: दो मच्छर को मैंने मार दिया।
0: मार दिए तो और बताइए कि आप किस तरह से और बचाव करते हैं मच्छरों से? मच्छरों से अपने आप को किस प्रकार से और आप बचाते हैं?
1: मच्छर को बचाएगा?
0: आप बचाएगा नहीं, अपने आप को आप बचाएंगे मच्छर से? मच्छर को क्यों बचाएंगे?
1: सुनिए, माने परिष्कार रखना होगा।
0: बिल्कुल।
1: डब्बा फब्बा, डाब का डब्बा
0: जी,
1: नारियल का डब्बा सब मैंने हटा दीजिए।
0: अच्छा
1: अच्छा, और एक बात, हम तो अभी तो आप रेडियो में सुना जो हवाई दीपिन जो और आइसलैंड में मोसा नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन और एक देश मैंने बताएंगे, फ्रांस। फ्रांस फ्रांस में मोसा नहीं है।
0: अच्छा, वहाँ भी नहीं है?
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
1: अच्छा सुनिए ना, हेलो।
0: हाँ बताइए।
1: बोलिए, एक तो पुराना गाना दीजिए ना, हम तो 64 हो गया।
0: वो आप 64 के हो गए? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी।

0: ने गीत चलाने के लिए।
1: हाँ
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरूप जी हमसे जुड़ने के लिए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है।
0: जी
1: हाँ।
0: धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बातें हो और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

सोचिए दोस्तों, रात का समय है, कमरे की लाइट बंद है और आप आराम से सोने की तैयारी कर रहे हैं, तभी भिन करके आवाज आती है और मच्छर कांड के पास आकर ऐसी आवाज करता है जैसे कोई बहुत जरूरी खबर सुनाने आया हो। और आप हाथ चलाते हैं और मच्छर गायब और आप फिर सोते हैं। तो दोस्तों, जब आप फिर से सोते हैं तो फिर मच्छर की आवाज आती है, फिर से हाथ चलता है लेकिन मच्छर फिर गायब। और आखिर में इंसान सोचता है, भाई तो सोने देगा या नहीं, शायद मच्छर और इंसान की यही पुरानी लड़ाई है। लेकिन दोस्तों, मजाक अपनी जगह, मच्छरों से होने वाली बीमारियां मजाक का विषय नहीं है, इसलिए साफ सफाई और बचाव को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब इस गपशप को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ। तो दोस्तों, ये जो गीत है कहीं ना कहीं बताता है कि मच्छर और इंसान का जो रिश्ता है ना, कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

तो दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है, बीमारी से बचाव सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि जागरूकता और रोकथाम से भी होती है। मच्छरों की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग बीमारियों के प्रसार से जुड़ी होती है, इसलिए किसी भी तरह के तेज बुखार या असामान्य लक्षणों को हल्के में ना ले और अपने आसपास पानी जमा ना होने देना, ये हमारी सबसे आसान और प्रभावी सावधानियों में से एक है। तो दोस्तों, देखते ही देखते हमारी ये एक घंटे की गपशप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। आज हमने गीतों के माध्यम से बात की, विश्व मच्छर दिवस के बहाने स्वास्थ्य और स्वच्छता की एक जरूरी बात जानी। तो दोस्तों, अगर आपने आसपास अब नजर डालते हुए बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा कि कहीं पानी जमा तो नहीं, अगर है तो उसे हटाइए, क्योंकि मच्छर के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।

दोस्तों, आज के इस नॉन स्टॉप गपशप में इतना ही। आज की हमारी बातचीत का छोटा सा संदेश अपने साथ जरूर ले जाइए। मच्छर छोटा है लेकिन सावधानी बड़ी होनी चाहिए। घर साफ रखे, पानी जमा ना होने दे, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाए और किसी भी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज ना करे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति और अब आपसे इजाजत लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, अपने आसपास भी जागरूकता फैलाते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नई सुबह, नई गपशप और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। जी हाँ, नॉन स्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना, जी हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में छोड़े जाती हूँ। तो मैं तो जा रही हूँ, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आप सभी से फिर मिलने आऊंगी ठीक 11:10 पर, कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर। जी यहाँ नहीं, 100.1 FM गोल्ड पर। तब तक लिए अपने दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और हाँ, गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

0: मस्त होंगी। मैम आप यहाँ हाजिर हो गई हूँ बोलो सुबह एफ एम रेनबो पर, ठीक 3:03 पर, लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, तीन का तड़का जहाँ होती है हॉलीवुड बॉलीवुड की फ्रेश न्यूज़ की बातें, साथ ही साथ तड़कते भड़कते लेटेस्ट गाने भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की कॉकटेल टू के इस गाने से।

जबरदस्त गाने के बाद चलिए चलते हैं हमारे पहले तड़के की ओर, जो है आवारा पन 2 का बॉक्स ऑफिस अपडेट। जी हाँ, इमरान हाशमी की फिल्म आवारा पन 2 बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले हफ्ते में लगातार चर्चा में। फिल्म ने शुरुआत में अच्छी रफ्तार पकड़ी थी और अब मिड वीक में इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पर खास बात यह है कि फिल्म ने कुछ ही दिनों में अल्फा के लाइफ टाइम कलेक्शन के पीछे छोड़ दिया, यानी इमरान हाशमी के फैंस के लिए ये वापसी काफी खास मानी जा रही है। अब नजर इस बात पर है कि फिल्म अपने पहले हफ्ते का सफर किस आंकड़े पर खत्म करती है और आने वाले दिनों में ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। फिलहाल इसी बात पर चलिए आवारापन 2 का ही गाना सुन लेते हैं, साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में।

तब हमारे म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाड़ी संधु का नया गाना स्टक ऑन यू जल्द ही सुनने को मिलने वाला है। खास बात यह है कि इस गाने को भारत में पहले सब्सक्राइबर फर्स्ट रिलीज के तौर पर पेश किया जाएगा, यानी कुछ लिसनर्स इसे आम ऑडियंस से पहले सुन पाएंगे। हाड़ी संधु अपने रोमांटिक और कैची ट्रैक्स के लिए जाने जाते हैं। उनके नए गाने को लेकर पहले से ही म्यूजिक फैंस में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है।

अब देखना होगा कि स्टक ऑन यू की पिछली उनकी पिछली म्यूजिकल हिट की तरह ऑडियंस के बीच कितनी जगह बना पाती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम सुन लेंगे हरी संधू अस्वास्थी मेहुल की आवाज में ना गोरिया गोरी फिल्म बाला से।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन का तड़का के अंतर्गत आप ये परियोजना प्रस्तुति सुन रहे हैं और आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, लेकिन इसे सिर्फ एक कानून समझना, सिर्फ एक एक्ट समझना शायद गलती होगी। ये दरअसल सोच बदलने की कोशिश है। भारत में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को पारित किया गया था। 29 मई 2018 से ये पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इससे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 लागू था, जो अपने समय के हिसाब से ठीक था पर बदलते दौर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ रही थी, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही थी और सबसे ज़रूरी मरीजों के अधिकारों को लेकर सवाल उठने लगे थे। तो फिर नया कानून क्यों बना? क्योंकि लंबे समय तक मानसिक बीमारियों को गलत नज़र से देखा गया। लोग इलाज लेने से डरते थे, कई बार उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता था। आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाता था, यानी जो इंसान पहले से ही मानसिक संघर्ष में था उसे और सजा मिलती थी। ये स्थिति बदलना जरूरी था। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इसी बदलाव का नाम है। ये कानून कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सस्ती और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराए। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि वो गंभीर तनाव में और उसे देखभाल की जरूरत है। इस कानून की एक खास बात है एडवांस डायरेक्टिव, यानी व्यक्ति पहले से लिख कर तय कर सकता है कि अगर भविष्य में वो मानसिक रूप से निर्णय लेने की स्थिति में ना रहे तो उसका इलाज कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। सीधी बात यह है कि अधिनियम मरीज को केंद्र में रखता है, उसकी गरिमा, उसकी पसंद, उसके अधिकार को महत्व देता है। तो जब हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करते हैं तो असल में हम एक ऐसे भारत

0: बात करते हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को छिपाने की चीज नहीं, समझने और संभालने की जिम्मेदारी मानी जाती है।
1: 107 FM Rainbow Presents, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: तो दोस्तों, इसी छोटे से परियोजना प्रस्तुति वाले ब्रेक के बाद तीन का तड़का में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए पहले सुन लिया जाए एक और गाना।

अब बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक हल्की फुल्की खबर की, जहां ईशा देओल ने अपने नए कैंपेन में सनी देओल के बेहद मशहूर डायलॉग ढाई किलो का हाथ को बड़े मजेदार अंदाज में इस्तेमाल किया। रक्षाबंधन के मौके पर बनाए गए इस कैंपेन में भाई बहन के फैमिली नोक झोंक और बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया को जोड़ा गया है। सनी देओल का बॉलीवुड आइकॉनिक डायलॉग हिंदी फिल्मों के सबसे पहचाने जाने वाले डायलॉग्स में शामिल है, इसीलिए ईशा का इस नए

अंदाज को इसे नए अंदाज में इस्तेमाल करना फैंस को काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। बॉलीवुड के पुराने आइकॉनिक मोमेंट्स को नए कैंपेन्स में इस्तेमाल करने का जो ट्रेंड लगातार देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही यूनिक है। बात करते हैं अब सीधे स्पाइडरमैन की ओर, जाते हैं सीधे हॉलीवुड की ओर। हॉलीवुड की खबर है कि टॉम हॉलैंड हैज इंडिया की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू रे अभी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और इसके बावजूद दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है। इंडिया में फिल्म की कमाई अभी करीब 474 यानी 474 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि डेली कलेक्शन में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे इतने दिनों में फिल्म का थिएटर्स में टिके रहना अपने आप में बड़ी बात है। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी एक बार फिर साबित कर रही है कि सुपर हीरो फिल्म्स की ऑडियंस कितनी ऑडियंस पर जो पकड़ है सुपर हीरो फिल्म्स की वो कितनी ज्यादा मजबूत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में।

दोस्तों, तीन का तड़का के जो आधा घंटे का स्लॉट है उसके अंत तक हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद आप सीधे सुनेंगे एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम 3:30 बजे से। पर उससे पहले चलिए तीन का तड़का का जो खात्मा है, जो अंत है, उसको यूं ही बोरिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज़बरदस्त एक गाना सुन लेंगे जो है फिल्म दीदी प्यार दे 2 से अभी सर स्ट्रास करण आलो औजला और ज्योति कटांगरी की आवाज़ में। तो चलिए ये गाना सुनते सुनते कहती हूँ मैं टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगी ठीक 5:15 पर लेकर चाय एंड क्लासिक्स एफएम गोल्ड पर। उसके बाद फिर 7 बजे से नज़ारा फिल्मों का तो रहेगा ही छाया लोग के अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं फिर वापस।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
0: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
0: उन्होंने लिखा है धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओ, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड

0: में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
1: जी।
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
1: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
1: जी।
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी जी जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया
1: जी।
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
1: जी।
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओं, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं, उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।

0: इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करें। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस?
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट, मेरी बारी है।
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी आई। सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सब का रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चाहते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है।
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
1: रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यूं चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
7: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
8: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
9: ये मारा। हरा दिया।
10: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
2: जी,
10: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी

0: एक खिलाड़ी को हरा दिया।
1: नाना जी
0: हा?
1: मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
0: ये कैसी अजीब बात है।
1: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते,
0: हा?
1: हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
0: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
1: ना परियों की ना जादू।

0: और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
1: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना।
0: हाँ,
1: जल्दी सुनाइए।
0: हाँ, बेटा सुनाता
1: हूँ। जल्दी सुनाइए।
0: अरे सोचने तो दो।
1: जल्दी सोचिए।
0: मैं किसकी कहानी सुनाऊँ, देखो वो।
1: अरे जीवन काका।
0: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी।
0: हाँ?
2: सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
0: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
0: यहाँ लेट जाओ।
2: जी
0: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
1: जी।
0: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
1: जी अभी लाई।
0: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
0: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
0: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी, जी।
0: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
1: जी, जी, जी, नाना जी।
0: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
0: जरा मुंह खोलो।
2: आ, आ, आ,
0: लो इसे जीभ के नीचे रख लो।
2: आ, आ, आ,

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों

0: का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो, वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
1: जिसे बुखार होता
0: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
1: समझ गई ना
0: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी,
1: बोल कर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हा?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।

0: नमस्कार, वेलकम बैक टू 107 एफएम रेनबो। मैं हूँ पापिया और आ गई हूँ ठीक 7:03 पर लेकर कार्यक्रम
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।
0: आशा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और आगे भी जो एक घंटा है वो काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। इनफैक्ट दो घंटे काफ़ी अच्छे गुजरने वाले हैं क्योंकि आप अपना फेवरेट कार्यक्रम सुन रहे हैं छाया लोग। साथ ही साथ आज थर्सडे का दिन, यानी कि बात करेंगे हम
2: नजारा फिल्मों का।
0: जी हाँ, बात करेंगे नजारा फिल्मों का लेकर। पर आज आपके साथ जो ये सफर है नज़ारा फिल्मों का, यहाँ हम किसी शहर, किसी पहाड़, किसी सड़क या किसी फिल्मी सितारे की तलाश में नहीं निकलेंगे। आज हम जाएंगे उन घरों में जो फिल्मों में सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी। कुछ घरों में हंसी गूंजती थी, कुछ में रिश्तों की गर्माहट थी, कुछ में रहस्य छिपे थे, कुछ में तन्हाई थी और कुछ घर ऐसे थे जिन्हें देख कर लगता था कि कहानी घर से नहीं, घर के भीतर रहने वाले लोगों से नहीं, बल्कि खुद उस घर से शुरू होती है। आज का हमारा सफर है जब घर भी एक करदार था। तो मेरा सवाल आज के लिए आपके लिए ये है कि आपके लिए घर जो शब्द है उसके क्या मायने हैं। फिलहाल चलिए सुनते हैं इस गाने से कार्यक्रम की शुरुआत कर ही देते हैं।

सोचिए दोस्तों, फिल्म जब शुरू होती है कैमरा धीरे धीरे किसी पुराने दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर बेल है, खिड़की आधी खुली है, बरामदे में कोई पुरानी कुर्सी रखी है, दीवार पर टंगी तस्वीरें हैं और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। अभी तक हमने किसी कलाकार को ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है कि ये घर कैसा है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे होंगे। यही तो कमाल है सिनेमा का। घर कई बार बिना एक शब्द बोले परिवार की कहानी सुना देता है। पुरानी हिंदी फिल्मों में घर का मतलब सिर्फ रहने की जगह नहीं हुआ करता था, घर रिश्तों से पता था। माँ की आवाज अक्सर रसोई से आती थी, पिता की मौजूदगी बैठक में महसूस होती थी, बच्चों की आवाज सीढ़ियों से आती थी और शाम होते ही पूरा घर जैसे एक साथ सांस लेने लगता था। वो बड़ा सा आंगन, बरामदा, लकड़ी की सीढ़ियां, खिड़कियों से आती धूप, दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर और कोने में रखा रेडियो, इन चीजों ने फिल्मों में घर को सिर्फ सजावट नहीं रहने दिया, उसे कहानी का हिस्सा भी बना दिया। तो आपके लिए घर के मायने क्या है, मैं ये जानना चाहूंगी। फोन लाइंस खुली हुई हैं, फटाफट फोन कीजिए और हमें बताइए। साथ ही साथ तो भाई गाने रिक्वेस्ट करने तो बनते ही, तो इंतजार है आपका, आपके कॉल का, आपकी बातों का।

0: अपने घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा।
1: तो दोस्तों, जब भी हम अभी पुरानी फिल्में देखते हैं, कोई दृश्य देखते हैं उसकी, तो कई बार हमें कलाकार से पहले उसका घर याद आता है, कोई हवेली याद आती है, कोई बंगला, कोई छोटा सा किराए का कमरा, कोई चाल, कोई पहाड़ी मकान, क्योंकि उस घर में सिर्फ कलाकार नहीं रहता था, वहाँ हमारी भी कोई पुरानी याद थी। याद कीजिए राज कपूर की फिल्मों की दुनिया, वहाँ शहर के बीच रहने वाला आम आदमी था, उसकी छोटी सी दुनिया थी, सपने थे, परेशानियाँ थी। श्री 420 और आवारा जैसे सिनेमा ने हमें आलिशान महलों के सामने खड़ी उस दुनिया से मिलवाया जहाँ घर छोटा हो सकता था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। राज कपूर के सिनेमा में घर और सड़क के बीच का फर्क भी बहुत दिलचस्प था।

अब कपूर खानदान के कपूर राज कपूर की फिल्मों की घर से बाहर आते हैं और आते हैं हमारे परिचित भारतीय घर में, जहां परिवार का मतलब सिर्फ माँ बाप और बच्चे नहीं थे, वहां चाचा थे, ताऊ थे, दादी थी, नानी थी, पड़ोसी थे और कभी कभी तो पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा लगते थे। हिंदी फिल्मों ने संयुक्त परिवार को इतनी बार पर्दे पर उतारा कि वो हमारे फिल्मी अनुभव का स्थायी हिस्सा बन गया। एक बड़ा सा घर जिसमें हर कमरे का अपना रिश्ता था और हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई कहानी। और फिर 1990 के दशक में आया वो दौर जब फिल्मों के घर अचानक बहुत बड़े हो गए, चमकदार झूमर, विशाल सीढ़ियां, बड़े बड़े कमरे और खूबसूरत बगीचे। हम आपके है कौन का परिवार याद कीजिए, जहां वह सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, पूरा उत्सव उसी घर में बसता था। शादी की रस्में, हंसी मजाक, रिश्तेदारों की आवाजाही, गीत संगीत, सब कुछ घर के भीतर घट रहा था। वो घर उस परिवार की खुशियों का विस्तार बन गया। और फिर कभी खुशी कभी गम, जहां रायचंद परिवार की वो शानदार हवेली, उसे देखकर ही समझ आता था कि यहाँ रहने वाला परिवार कितना बड़ा, प्रभावशाली और परंपराओं में बंधा होगा। विशाल सीढ़ियां, लंबी गलियां, बड़े कमरे, लेकिन इतनी भव्यता के बीच फिल्म का असली संघर्ष क्या था? घर का टूटना और परिवार का बिखरना। यानी घर जितना बड़ा था, भावनाओं का सवाल उतना ही गहरा था। कितना बड़ा घर परिवार को साथ रख सकता है? ये तो जानने वाली बात है ना। फिलहाल सुन लेते हैं हमारा अगला गीत।

तो क्या बड़े बड़े जो घर हैं वो एक साथ परिवार को साथ रख सकते हैं? पता नहीं, शायद डिपेंड करता है। सिनेमा में एक और घर था जो बिल्कुल दूसरी दुनिया के प्रतिनिधित्व करता था, मध्यम वर्गीय घर, छोटा सा ड्राइंग रूम, साधारण फर्नीचर, सीमित जगह, उसमें बड़े बसे बड़े बड़े रिश्ते। ऋषिकेश मुखर्जी और बाद में बसु चटर्जी की फिल्मों में ऐसे घर बार बार दिखाई देते थे। गोलमाल, चुपके चुपके, बातों बातों में, जैसे फिल्मों में घर बहुत ग्लैमरस नहीं थे लेकिन बिल्कुल अपना सा लगता था। वहां हमें अपने पड़ोस की झलक मिलती थी, वहां हंसी महंगी सजावट से नहीं लोगों की आदतों और रिश्तों से पैदा होती थी। गोलमाल को ही याद कीजिए, भवानी शंकर के घर का माहौल, अनुशासन, बैठक का अंदाज और उसमें फंसा हुआ राम प्रसाद, घर खुद कॉमेडी का हिस्सा बन जाता। एक मूंछ, एक झूठ और एक कमरे से शुरू हुई कहानी हमें बताती है कि कभी कभी घर की दीवारें भी राज छुपा कर रखती है।

0: नजारा फिल्मों का।
1: शुरू की घड़ी समय बता रही है 7:31 और बातें हो रही हैं आज नजारा फिल्मों का में, फिल्मों में दिखाए गए अलग अलग तरह के घरों के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब जब गोलमाल फिल्म की बात हो ही रही थी तो इस प्यारे से गाना तो हमने सुन लिया, उसके बाद गोलमाल फिल्म का ही अगला गाना हो जाए किशोर कुमार की आवाज़ में।

जब घर की बातें हो रही तो फिल्मों में राज की बात हो तो हवेलियों को कैसे भूल सकते हैं भाई। हिंदी सिनेमा की हवेली, उसके बिना तो रहस्य और डर की आधी दुनिया अधूरी लगती है। बड़ा सा लोहे का दरवाजा, लंबा बरामदा, हवा से हिलते पर्दे, रात में बजती घड़ी और एक ऐसी सीढ़ी जहां जाने को सबको मना किया जाता है। पुरानी फिल्मों में हवेली को इतना रहस्यमय बना दिया गया कि कई बार तो हमें लगता था कि उस पर, उस घर में रहने वाला इंसान खतरनाक हो या ना हो, घर जरूर कुछ तो छिपा रहा है भाई। हवेली कभी किसी जमींदार की होती, कभी किसी पुराने खानदान की, कभी किसी विरासत की और कभी किसी भूत की। महल जैसे फिल्मों में घर और रहस्य का रिश्ता इतना गहरा हो जाता कि दर्शकों के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता कि कहानी का असल रहस्य कमरे के अंदर है या खुद उस इमारत में। और यही घर जब प्रेम कहानी में आता तो उसका रूप ही बदल जाता। वही खिड़की जहां से किसी ने बाहर देखा था, वही बरामदा जहां दो लोग पहली बार मिले थे, वही सीढ़ियां जहां किसी ने किसी को जाते हुए देखा, अचानक रोमांटिक मेमोरी बन जाती है। हिंदी फिल्मों में खिड़कियों और बालकनी तो जैसे प्रेम के स्थाई जगह हुआ करती थी। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में हमारा अगला गाना। आगे घर के बारे में बात करेंगे।

दोस्तों, कितनी ही फिल्मों में नायक नायिका के बीच दूरी बस एक खिड़की की रही है। बाहर बारिश हो रही है, अंदर कोई खिड़की के पास खड़ा है और सामने किसी दूसरे की खिड़की में कोई चेहरा दिखाई दे रहा है। उस दौर के सिनेमा में प्यार के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की जरूरत नहीं थी, एक खिड़की काफी होती थी। फिर आते हैं मुंबई के चौल। यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। घर छोटा है लेकिन जिंदगी बड़ी है। एक कमरे में कई लोग, साझा गलियारे और एक दूसरे के घर की खबर रखने वाले पड़ोसी, हर आवाज का पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाना। चौल ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसी दुनिया दी है जहां प्राइवेसी कम थी लेकिन अपनापन बहुत ज्यादा था। किसी के घर में बच्चा हुआ तो पूरा कॉरिडोर खुश, किसी की शादी हुई तो पूरा मोहल्ला शामिल, और किसी के घर में परेशानी आई तो दरवाजा खटखटाने के लिए रिश्तों का इंतजार नहीं था। मुंबई की चौल सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं थी, वो एक सोशल वर्ल्ड था। फिल्मों ने उसे कॉमेडी में भी दिखाया, संघर्ष में भी दिखाया, सपनों की शुरुआत के रूप में भी। छोटे घरों में रहने वाले बड़े सपने शायद हिंदी सिनेमा की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। और फिर धीरे धीरे फिल्मों में घर बदलने लगे, शहर बदले, परिवार बदले, रिश्तों का आकार बदला और घरों की तस्वीर भी बदल गई। हाई न्यूक्लियर फैमिली, बात करेंगे उस बारे में भी, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गीत भी।

तो बात कर रहे थे कि दोस्तों धीरे धीरे फिल्मों में घर बदलने लगे, शहर बदले, परिवार बदले, रिश्तों का आकार भी बदला और घरों की तस्वीर भी बदल गई। संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली आने लगी, बड़े आंगन की जगह अपार्टमेंट बालकनी ने ले ली, पुरानी लकड़ी की अलमारी की जगह मॉडर्न फर्नीचर आ गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, घर आज भी फिल्मों में भावनाओं का सबसे मजबूत ठिकाना बना रहा। कभी घर छोड़ना कहानी बन गया, कभी घर लौटना, कभी घर से भागना आजादी का प्रतीक बना और कभी उसी घर में वापस आना पहचान पाने का रास्ता। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को ही याद कीजिए, फिल्म का एक बड़ा हिस्सा घर और परिवार की उस दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है जहां प्रेम सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं है। घर वहां परंपरा है, पिता का अधिकार है, माँ का स्नेह है और बेटी की अपनी इच्छा भी है और इसलिए फिल्मों में घर का दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी का घर से निकलना सिर्फ बाहर जाना नहीं होता, वो कई बार जिंदगी का नया अध्याय भी होता है और घर में वापस लौटना सिर्फ वापस आना नहीं होता, वो स्वीकार किए जाने, माफ किए जाने या अपने पन को फिर से पाने का क्षण भी होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं अगला गाना।

दोस्तों मुझे ना हमेशा फिल्मों के वो छोटे छोटे घर बहुत दिलचस्प लगते हैं जिनमें पैसा कम होता है लेकिन जिंदगी बहुत होती है। एक कमरे में रखा पलंग, पास में छोटी सी मेज, दीवार पर कैलेंडर, खिड़की के पास रखे पौधे और बाहर से आती सड़क की आवाज, यही वो घर है जिनमें हिंदी सिनेमा ने आम आदमी के सपनों की जगह दी। कभी वो घर किसी नौकरी पेशा परिवार का था, कभी संघर्ष करते कलाकार का, कभी किसी विधवा माँ और उसके बच्चों का। वहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन इमोशनल जो स्टेक्स बहुत बड़े थे, और शायद दर्शक इसलिए उनसे जुड़ जाते क्योंकि वो घर हमें अपने घर जैसे लगते थे। फिल्मों में माँ का घर तो अपने आप में एक अलग अध्याय ही है। माँ का घर अक्सर वो जगह होता है जहाँ नायक कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लौट कर बच्चा ही रहता है। वो कमरा, वो रसोई, वो पुरानी चारपाई और माँ की वही आवाज, खाना खा लो। सिनेमा ने एक छोटे से वाक्य में न जाने कितनी पीढ़ियों की भावनाएं रख दी है ना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और सुन लेते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में अगला गाना।

0: दोस्तों चलिए हमारे जो कॉलर हैं उनसे बात कर ली जाए थोड़ी। हेलो
1: हेलो दीदी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: शांतनु घोष बोल
0: जी। शांतनुता कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, बताइए बताइए कौन सा
1: ঘর মানে তো ঘরের মধ্যে মিলেমিশে থাকাটাই একটা ঘরের সৌন্দর্য, নিজেরও ভালো লাগবে, ঘরে কাজ দেখে এলে বাচ্চারা বাবা বলে রাখবে, এটাও ভালো লাগে। আর একসাথে সব মিলেমিশে খাওয়া দাওয়া ভালো লাগে। আর দিদি মহারাঘবের একটা গান শুনিয়ে দেবেন,
0: কাজটা
1: কি ডর।
0: ওকে ঠিক আছে, চলিয়ে শোনাতে হ্যাঁ। আর অভি সময় কাফি কম হ্যায় দোস্তো, তো ফিলহাল
1: সময়
0: हाँ जी, मिलते हैं आपसे वापस। ओके बाय। तो फिलहाल समय काफ़ी कम है और जाते जाते शांतनुता ने जो गाना रिक्वेस्ट किया हुआ है मोहरा फिल्म से नकचरी की धार, चलिए ये सुन लेते हैं। और 8:00 से 8:02 से आज आपके साथ रहेंगी प्रीति मुरारका। जी हाँ, कंटिन्यू करेंगी।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: एक सौ सात FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त प्रीति, लेकर आई हूँ कार्यक्रम छायालोक। कभी ऐसा हुआ है कि आप मुस्कुरा तो रहे हो लेकिन दिल के किसी कोने में कोई पुरानी याद चुपचाप बैठी हो? कभी कोई अच्छी खबर मिली हो और उसी पल किसी ऐसे इंसान की याद आ गई हो जो उस खुशी में आपके साथ नहीं है? और कभी कभी बिना किसी खास वजह के बस मन बहुत अच्छा हो जाता है। यही तो है दिल की सबसे दिलचस्प बात। दिल कभी एक ही भावना में नहीं रहता, यहाँ खुशी भी होती है, उदासी भी, याद भी होती है और उम्मीद भी, शिकायत भी होती है और प्यार भी। दिल के मौसम बदलते रहें और हम हर मौसम को महसूस करते रहें, यही तो है आज का फलसफा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एहसास से जहाँ खुशी थोड़ी शरारती है और दिल थोड़ा बेफिक्र। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 2213-1341। इस नंबर के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं और उस फरमाइश को हम पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

0: चलिए देख लेते कि हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मेरा नाम है शुभजीत, बिलघोरिया से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ शुभजीत बताइए, कैसे हैं?
1: एक गाने, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: ओके,
1: आप कैसी हैं?
0: बस मस्त।
1: और उम्मीद है आज बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अच्छी अच्छी फरमाइश रखते जाइए, हम सुना दे जाएंगे।
1: मैं गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ, एक्चुअली बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन काफी बहुत ही अच्छा गाना है, वो है दिल तो पागल है का, एक दूजे के वास्ते।
0: ओके,
1: हाँ जी। जब फिल्म शुरू होता है, जो जब जब वो टाइटल्स दिखाई देता है, तो वो गाना बजता है। वो एक्चुअली मेन मूवी के अंदर में नहीं है, लेकिन जब ओपनिंग में है।
0: हाँ जी।
1: और वो गाना बहुत ही अच्छा है।
0: हाँ जी, लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में। ओके, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम जरूर सुनाएंगे ये गीत। तो इनकी फरमाइश पर तो हम जरूर सुनाएंगे इस गीत को, पर सुनाने से पहले चलिए एक बात मैं बता दूं कि सच में दिल पागल ही तो होता है ना। कभी बिना वजह खुश हो जाता है, तो कभी छोटी सी बात पर उदास भी हो जाता है, कभी किसी की एक मुस्कान पर अपना सारा हिसाब किताब भूल जाता है। लेकिन शायद यही तो दिल की खूबसूरती है, यह हमेशा तर्क से नहीं एहसासों से चलता है। तो अपने इस नटखट दिल को थोड़ा वक्त दीजिए, उसे महसूस करने दीजिए, सपने देखने दीजिए, और कभी कभी बस यूं ही पागल हो जाने दीजिए ना।

0: चलिए देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग। नमस्कार सुस्वंदा।
0: गुड इवनिंग, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं कुतुबुद्दीन मुल्ला बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी बताइए।
1: तिल फिर श्रीनगर से।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: हाँ दीजिए, आप कैसे हैं पहले बताइए।
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तभी तो यहाँ पर हूँ आपसे बात करने के लिए। बताइए।
1: इस टाइम में साजन फिल्म का पहली बार वो गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी।
1: और इस टाइम जो AIR FM रेनबो सुन रहे हैं सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, तो चलिए इनकी फरमाइश पर हम सुनाते हैं पहली बार मिले हैं। बिल्कुल, पहली मुलाकात की बात ही कुछ और होती है। न सामने वाले को ठीक से हम जानते हैं और ये भी नहीं पता होता है कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, फिर भी दिल में एक छोटी सी हलचल ज़रूर हो जाती है।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग अपनी दोस्त प्रीति के साथ। वक्त तो चले हैं 8:26 और 30 सेकेंड। तो चलिए मैं एक बात बताऊं आपको,

ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहते हैं। उनकी आवाज़ हमें याद दिलाती है, उनकी बातें याद दिलाती हैं। उनके साथ बिताया हुआ बहुत ही छोटा सा पल भी क्यों ना हो, वह भी याद रहता है। समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ यादें वह वहीं ठहर जाती हैं। और जब कोई गाना उन यादों को छू लेता है, तो अचानक से हम प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं, है ना?

0: देखते हैं 2213-1341 पर हमारे साथ अब कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो प्रीति जी नमस्कार।
0: नमस्कार बताइए कौन बोल रहे हैं आप।
1: मैं सांकराइल मानीपुर से श्याम कुमार चिंचल बोल रहा हूँ।
0: हाँ श्याम जी बताइए
1: आप कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हो रही है हमारी।
0: जी बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ मैं।
1: अच्छा चलिए अच्छी रही है आप।
0: हाँ जी बताइए।
1: और आप तो हम सभी लोग यहाँ ये गीत सुनने के लिए बैठे हुए हैं। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर है।
0: ओके तो चलिए तो दिल एक
1: मंदिर सॉन्ग बजा दीजिए प्लीज।
0: बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। तो श्याम जी की फरमाइश पर दिल एक मंदिर का टाइटल ट्रैक तो मैं बजाने वाली ही हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि मंदिर में जाकर इंसान अपनी सबसे सच्ची प्रार्थना करता है, लेकिन कभी कभी किसी इंसान के लिए हमारे दिल में इतनी श्रद्धा होती है और इतना अपनापन होता है कि वही दिल एक मंदिर बन जाता है ना, जहाँ शिकायतों से ज़्यादा दुआएँ होती हैं, जहाँ पाने से ज़्यादा किसी के सुख की फिक्र होती है और जहाँ प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि एक विश्वास बन जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि दिल एक मंदिर है और सच्चा प्यार उसकी सबसे खूबसूरत आराधना।

0: देखते कौन है हमारे साथ। हेलो
1: जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बताइए
1: जी। मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: हाँ पारस जी, बताइए कैसे हैं आप।
1: प्रोग्राम बहुत ही उम्दा हो रहा है।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए।
1: मैं तो स्वस्थ मस्त हूँ, आप बोलिए आप कैसी हैं।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ।
1: आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रहा है। पहले आप लोग जब आवा गीत में आते थे तब आप लोग से बात करते थे।
0: हाँ जी, अब फिर से जुड़ चुके हैं हम लोग। चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप।
1: आप सुना दीजिए, फिल्म निगाहें।
0: हाँ जी।
1: और गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: ओके, तो चलिए आपकी फरमाइश पर हम जरूर सुनाते हैं कि सावन आते ही मौसम ही नहीं बदलता, दिल का मौसम भी बदल जाता है। बारिश की बूंदें जब खिड़की पर दस्तक देती है तो जाने क्यों पुरानी यादों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। कहीं झूले पड़ते हैं तो कहीं मेहंदी रचती है, तो कहीं कोई अपने प्रिय के आने का इंतज़ार करता है, और कहीं कोई चुपचाप बारिश को देखता हुआ सोचता है, काश आज की इस खूबसूरत फुहार में भी वो मेरे साथ होते। तो आइए सावन की उसी रिमझिम, उसी उमंग और उसी मीठी सी तड़प को महसूस करते हैं इस गीत में।

0: वक्त चला है 8:46 और 43 सेकेंड। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम त्रिपुरा से अशोक कौर बोल रहे हैं।
0: हाँ अशोक जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ हम ठीक है। हमको गाना है आखिर फिल्म से, लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता।
0: ये गीत सुनना चाहेंगे। किसी का किसी लाल दुपट्टे वाली को सुनाना है?
1: सवाल भी सुनेगा जितना है, जितना दूर तक जाएगा,
0: मतलब जो भी लाल दुपट्टे वाली लाल दुपट्टे पहन रही है सभी के लिए।
1: हाँ तो आप बूढ़ा हो गया ना।
0: ओ आप बूढ़े हो गए, दिल तो जवान है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, इन्हें ये गीत सुनना है और लाल दुपट्टे वाली फिल्म आंखें से कुमार सानू और सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। वैसे भी खूबसूरती हमेशा शब्दों की मोहताज नहीं होती, कभी कभी बस एक नज़र पड़ती है और पल ठहर सा जाता है ना।

वक्त तो चला है 8:53 मेरे जाने का भी वक्त हो चला है, पर जाते जाते एक बात बताऊं, जिंदगी का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, जिंदगी का मतलब है हर एहसास के साथ जीना। जब दिल खुश हो ना, उसे जी भर के महसूस कर लीजिए, और जब दिल उदास हो तो उसे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, और जब दिल उलझा हुआ हो तो कोई अच्छा सा गाना चला लीजिए और 107 FM ब्रेन वो ही सुन लीजिए। शायद जवाब ना मिले, लेकिन दिल थोड़ा ज़रूर हल्का हो जाएगा, ये पूरी तरह से मैं गारंटी देती हूँ। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर एक दिन एक नए एहसास और कुछ नए गीतों के साथ मिलूँगी। तब तक टाटा बाय।

शिंचिलम कितना हसीने चेहरा। 1994 छवि दिलवाले छबिर गान शुनछिलम कुमार शानुर कण्ठे, लिरिक्स समीर, कम्पोजर नदीम श्रावण। शुनछेन आपके लिए एबारेर गाने अलके याग्निक एवं उदित नारायण।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।